0: un ciao a Gorizia.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: ससिकल सारे नू तुसी सुन रहे हो रेडियो हैंडबॉल इटली तो पहला रेडियो जिहड़ा हैंडबॉल बारे गल करता है पूरे इटली विच ससिकल मेरे वीर ते भैणां नू जिहड़ियां इंडिया तो सुन रही ने सुनते रहो ते लाइक मारो फेसबुक ते पेज ते रेडियो हैंडबॉल